क्या आप उन लोगों में से हैं जो सुबह बेदार होते ही कॉफी मशीन का रुख करते हैं? तो फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। अगर ये इस्तेमाल बकसरत हो, एक दिन में कितने कप बहुत ज्यादा तस्वर किए जाते हैं, और क्या कैरमल और क्रीम वाली इंस्टेंट कॉफी को वाकई कॉफी के तौर पर माना जाता है? वो लोग जो सुबह

इससे उपस्था हो सकती है। अगर आपको बेखाबी के मसाइल हैं तो सुबह तक काफी को महदूद रखना खासतौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। आखिर में डॉक्टर चाकर इस बात पर जोर देते हैं कि दर्ज सैल ग्रुपों को काफी के बारे में ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। वो लोग जिनको अरिथमिया, हाई ब्लड प्रेशर, पेट की मिसाइल इस्तराब की खराबी या ऑस्टियोपोरोसिस है, वह हमला खवातीन के लिए कतई तजवीज है। योमिया कैफीन की मकदार 200 मिलीग्राम से कम रखी जाए। हमारी आज की पॉडकास्ट का लब्बे लुबाब कुछ यूं है, काफी सही मकदार में और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये एक बहुत ही फायदेमंद मशरूब है। लेकिन जैसा कि तमाम अच्छी चीजों की तरह इत्तेदाल पसंद ही इसकी कुंजी है। हमारी अगली पोस्ट तक खुद इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: जिसका सत्यापन बराह रास्त मास्को के दो सबसे बड़े गाहकों चीन और भारत ने किया है।
1: सूडान की रियासत मगरबी कुर्दुफान में सोने के एक खान बैठने के वाकये में हलाकतों की तादाद बढ़कर 82 हो गई है। नुहूर शहर के करीब वाकई जरा सोने के काम में पेश आने वाले इस तबाही के बाद तलाश और बचाव का काम नाकाफी वसाइल के साथ जारी है। खान का बैठना पहले एक कोनून से शुरू हुआ और फिर इससे मुंसलिक दूसरे कोनों तक फैल गया। इमदाद देने वाली टीमें 30 मीटर से ज्यादा गहराई में फंसे हुए दर्जनों अफराद तक पहुंचने में मुश्किल का सामना कर रही है। भारी मशीनरी की अदम मौजूदगी की वजह से तलाश का काम इंतहाई महदूद वसाइल के साथ चलाया जा रहा है। सूडान भर में रिवायती खान खुनी के शुबे में 20 लाख से ज्यादा अफराद काम कर रहे हैं। ये खानकुन इंतहाई मुश्किल और खतरनाक हालात में काम करते हैं।
0: तुर्की का नई नस्ल का बुनियादी तरबियती तैयारा हुरकुश दोम तुर्क फिजाया के बेड़े में शामिल होने वाला है, जो मुल्क की दिफाई सनत के लिए एक नया संग मील है। तुर्की के महकमा दिफाई सनतों का सरबरा खालिक गुरगुन और तुर्क फिजाया के कमांडर जनरल राफेत दालकिरान ने मकामी तौर पर तैयार करदा हुरकुश दोम और हुरजेट तैयारों की आजमाइशी परवाजों में हिस्सा लिया। गुरगुन ने कहा कि पहला हुरकुश दोम जल्द ही फिजाई कमान के सुपुर्द कर दिया जाएगा। उन्होंने तुर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एन सोशियल पर लिखा कि जब आप तैयार के कॉकपिट में बैठते हैं तो आप डिज़ाइन की मेज़ से लेकर पैदावार की लाइन तक और आजमाइशों से परवाज तक फैली हुई बेपनाह मेहनत को ज़्यादा करीब से महसूस करते हैं। अब यह मेहनत एक और नतीजा देने के करीब है। हम अपना पहला हुरकुश दोम तैयारा बहुत जल्द अपनी फिजाई कमान के हवाले करेंगे। परवाज के बाद शेयर किए गए एक वीडियो में गुरगुन ने इस मुतवक्का फराहमी को तुर्की के लिए एक संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार तुर्की मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारे को अपनी मुसल्लह अफवाज को फराहम कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा मानी खेज है। यह आज इसकी आखिरी आजमाइश भी थी। इन आखिरी तजुर्बात का हिस्सा बनना हमारे लिए बायस फ़ख्र था। दालकिरान ने भी तुर्की में तैयार तैयारे में परवाज करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तुर्क फिजाई के कमांडर के तौर पर अपने मुल्क के बनाए हुए तैयारे में परवाज करना मेरे लिए एक एजाज और फ़ख्र यह बात थी। गुरगुन और दालकिरान एक हुरजेट टेस्ट परवाज में भी शरीक हुए, जिसके दौरान इस तैयारे ने तुर्की के मकामी रेडार सलाहियतों का भी मुजाहरा किया। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुई हैं।